0: of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी.